0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: ओडोडो नमोनियो देयो के कारमोक लोना चोली को दे पलेजी जने

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो रेडियो रेडियो
2: Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान यूनियो
1: और मैं पाचू इटी यूनियो और रेडियो

0: तुम ये क्रेवर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो